सिमटि राखर नाय तुमरी समार जन स राख अल्ला आन घर के गोले दौंदन अन सम तेरा खो प्रान करो प्रभु ना योग तन साहिब।

सार ना जाना तेरी सब ते वड्डा सत गुरु नानक जिन कल राखी मेरी दीन दर्द दुख भंजना कट कट नाथ अनाथ

नाव निधि अठारह सिद्धि पिछे लगिया फिरे जो हर हृदय सदा वसाई बिन सतगुर नाव न पाइए बुझ कर विचार नानक पूरे भाग सतगुर मिले सुख।

तिन दर्शन पिका सोण कीर्तन हर गुण रवा हर जस मन लिखा हर नाम सलाहे रंग से सब किल विक कृका तन तन सुहावा सो शरीर थान है जिथे मेरा गुरदरे बिका हर नाम सलाही रंग से ओ सब किल विख कृका तन तन सुहावा सो शरीर थान है जिथे मेरा गुरतरे बिका। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपाओ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैवं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपाओ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैवं गुर प्रसाद। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। वाहे गुरु जी का खालसा।

0: हर नहारा आसा महला पहला आखां जीवां विसरै मर जाऊं आखण औखा सच्चा नाऊं सचे नाम की लागे भूख उत भूखै खाए चलिहै दुख सो क्यों विसरै मेरी माए साचा साहिब साचे नाए रहाओ साचे नाम की दिल वडियाई आख थके कीमत नहीं पाई जे सब मिलके आखण पाए वड्डा ना होवै घाट ना जाए ना ओह मरे ना होवै सोग दिंदा रहे ना चुकै भोग गुणे हो होर नाही कोए ना को होआ ना को होए जे वड़याप ते वड़ तेरी दात जेना देना करके कीती रात खसम विसारी ते कम जात नानक नावें बासनात राग गुजरी महला चौथा हर के जन सतगुर सतपुरखां बिनो करो गुरपास हम कीरे किरम सतगुर शरणाई कर दया नाम प्रगास मेरे मीत गुरदेव मोको राम नाम प्रगास गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीरत हमरी रहरास रहाओ हर जन के बडभाग वडेरे जेना हर हर शरदा हर प्यास हर हर नाम मिलें त्रिपता सही मिल संगत गुण प्रगास जेना हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास तन तन सतसंगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम प्रगास राग गुजरी महला पंजवां काहे रे मान चितवहे उद्दम जा आहर हर जियो प्रया सैल पत्थर में जनत्यो पाए ताकर रिजक आगे कर धरया मेरे माधो जी सतसंगत मिले सो तरया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरया रहो जनन पिता लोक सुत बहिता कोई ना किसकी तरया सिर से रिजक समाहे ठाकुर काहे मन पौ करया उड़े उड़ आवे सैकुंसा तिस पाछे बचरे छरया तिन कवन खलावे कवन चुगावे मन में ही सिमरन करया सब निदान दस अष्ट सिदान ठाकुर कर तल त्रया जन नानक बल बल सदबल जाइए तेरा अंत ना पारा भरिया सब निदान दस अष्ट सिदान ठाकुर करतल त्रया जन नानक बल बल सदबल जाइए तेरा अंत ना पारा भरिया राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख नरंजन हर पुरख नरंजन हर गम गम पारा सब ते आवहे तुद जी हर सच्चे सृजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दाता रा हर ते आवहो संतो जी सब दुख विसारन हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू कट कट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समाणा एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज वडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हां तुद बिने अवर ना जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख बखाणा जो सेव है तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा हर ते आवहे तुद जी से जन जुग में सुखवासी से मुक्त पाए जय ना हर ते आया जी तिन टूटी जमकी फांसी जिन निरपाओ जिन हर निरपाओ ते आया जी तिन का पौ सब गवासी जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहण तुद जी हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनक करें हर पूजा जी तब तापहि जपहि बयंता तेरे अनेक पढ़े बहु सिमर शास्त्र जी कर क्रिया खटकर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भावे मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जे बड़े अवर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नहीं चल करता सोई तुद आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे करहे सो होई तुदे आपे सृष्ट सब उपाई जी तुदे आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सबसे का जानोई आसा महला चौथा तू करता सचियार मेंडा साई जो तो भावे सोई थीसी जो तू दहे सोई हो पाई रहाओ सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनों कृपा करें तिन नाम रतन पाया गुरमखला दा मन मुग गवाया तुदे आ विछोड़िया आ मिलाया तू दरी आओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे जी जन सब तेरा खेल विजोग मिल विछुड़या संजोगी मेल जिसनों तू जाना है सोई जन जाने हर गुण सद ही आख बखाने जिन हर सेवया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुदविंदूजा अवर ना कोए, तू कर कर वेखे जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला, तित सरवरड़े पाइले निवासा, पाणी बावक तिन्हे किया, पंकजो मोह पग नहीं चाले, हम देखा तहें डूबियले, मान एक न चेत समूढ़ मना, हर विसर तेरे गुण गलया रहाओ, ना हो जति सती नहीं पड़या, मूरख मुगदा जन्म पया, प्रणवंत नानक तिनकी शरणा, जैनो तू नाही विसरया। आसा महला पंजवा, भई प्राप्त मानक देहरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तेरा किते ना काम, मेल साध संगत भज केवल नाम, स्रंग्याम लाग पवजल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाओ, जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साध ना जन हर राया, कहो नानक हम नीच करमा, शरण परे की रखो शर्मा, जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साध ना जन्या हर राया, कहो नानक हम नीच करमा, शरण परे की रखो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चाओ पाई, हमरी करोहा दे रक्षा, पूर्ण होए चित्त की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सवय तुम काब हो, आप हाथ ने मुहि बचाब हो, सुखी बसे मोरो परवारा, सेवक सिख सवय करतारा, मोर अच्छा निज कर दे करिए, सवैरन को आय संग्रिये, पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें छाट कोई अवरना ध्याऊं, जो वर चहूं सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख मारे तारिये, चुन चुन शतर हमारे मारिये, आभाद मुझे उबरिये, मरण काल का त्रास निवरिये, हो जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तु जो करी हो रक्षा, राख लियो महे रखन हारे, साहेब संसाए प्यारे, दीन बन दुष्टन के हंता, तुम्हो पुरी चतरदस कंता, काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जो थियो, जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है तहें हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दैंत जक्षण उपजायो, आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तिसही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी शिव कन को शिव गुण सुख दियो शत्रण को पलमो बद कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चिंटी ते कुंचर असथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछन्ने कट कट के पड़ पड़ की जाने जब उद करख करा कर तारा प्रजा धरत तब देह अपारा जब आ करख कर तुह कब हूं तुम मैं मिलत देहे धर सब हूं जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे आप अपनी बूझ उचार तुम सब ही ते रहत नर आलम जानत बेद भेद अर आलम रंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मोड़े उचारत भेदा जाको पीव ना पावत बेदा ताको कृपा हणे अनुमानत महामूढ़ कछ भेद ना जानत महादेव को कह सदा शिव रंकार का चीनत नह पिव आप अपनी बुध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तोहें तेती तुमरा लखा न जय पसारा किह विद सजा प्रथम संसारा इक रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कहीं पूपा अंडा जे रसे तज कीनी उत्पज खान बहुर रच दीनी कहो फूल राजा हवे बैठा कहो समट भयो शंकर अकैठा सगरी सृष्ट दखाए अचंभव आजुगा स्वरूप स्वयंभ अब रक्षा मेरी तुम करो सिखे अवार असिख संघरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रणगाता जे अस तुझे तब शरणी परे तिनके दुष्ट दुख हवाए मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को इक बार ते है ताकि काल निकट नह अह रक्षा हुए ताही सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे न हरयो ताकि ताप तन कमाए हरिहो रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई दुष्ट शाह शवाय सके ना कोई एक बार जिन तुम्हें संवारा काल फांसती ताहे ओबारा जिन नारायण नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दोख तेरा खड़ग के मैं शरण तिहारी आप हाथ दे ले हो ओ बारी सर उठो मोह सहाई दुष्ट दोख ते ले हो बचाई खड़ग के मैं शरण तिहारी आप हाथ दे ले हो ओ बारी सर उठो मोह सहाई दुष्ट दोखते ले हो बचाई सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने ओ राम रहीम प्राण कुरान अनेक कहे मत एक ना माने ओ सिमरत शास्त्र वेद सभाए बहुपीद कहें हम एक न जानियो सिरियस पान कृपा तुमरी कर मैं ना कह हो सब तो ही बखान्यो दोहरा सगल द्वार कौ छड़ के गए हो तोहारो द्वार बही गहे की लाज अस गोविंदास तोहार सगल द्वार को छड़ के गए हो तोहारो द्वार बही गहे की लाज अस गोविंदास तोहार राम कली महला तीजा अनंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तां वाया सह सेती मन वजियां वादाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईया शब्दो तंगावो हरी केरा मंजनी बसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओह करे तेरा कर सब सवारना सोना गल्ला समरत स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले सच साहिबा क्या नाही घर तेरे करता तेरे सब किच है जिस दे हैं सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसा भए नाम जिनके मन वसया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहेब क्या नाही घर तेरा साचा नाम मेरा आधारो सच नाम आधार मेरा जैनों भुखा सब गवाइया कर शान सुख मन वसया जैनों इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटहो जिस दिया एह वड्याइया कह नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो सच्चा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित कर सभागे कर सभागे शब्द वाजे कला जित करतारिया पंच दो तुद वास कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जिनको सेना महार के लागी कह नानक तै सुख होआ तित घर अन्न हद बाजे आनंद सुनहो वड भागी हो सगल मनो रथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पए सरसे पूरे गुर ते जानी सुन ते बनी कहते पवित सतगुर रहा पर उरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुन ते बनी कहते पवित सतगुर रहा पर उरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे मुंदावणी महला पंजवां थाल विच तिन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे अधारो जे को खावे जे को पुंचाए तिसका होए उधारो एह वस्त तजी नहीं जाई नित नित रख और तारो तम संसार चरण लग तरिये सब नानक ब्रह्म पसरो श्लोक महला पंजवा तेरा कीता जातो नाही मैनो जोग की तोई मैं निर्गुण आरे को गुणे नाही आपे तरस पायोई तरस पाया मेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिले आ नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवे हरे आ तरस पाया मेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिले आ नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवे हरे वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह
1: ठाकुर तुम पहरदास जियो पिंड सब तेरी रा

कौन है जिथे मेरा गुरु धर विखां। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

जय कर कीर्ताखिय करते काय बिचारो तित कर गावो सोयला सवरेओ सर्जनहारो तुम गावो मेरे निरपौ का सोयला वारियत सोयला सदा सुख हे रहाओ। नित नित जिड़े संभाले अन देखेगा देवनहार त्रिदान कीमत ना पवै तिस दाते कवण सुमार संबत सा लिखे आ मिल कर पावो तेल देहो सजना सी।

जन्म त एहो सके अथ जित नाम हर हृदय निवास, सुर नर गण गंधर्व छे दर्शन आसास, पलो प्रसिद्ध तेजो तनो कल जोड़ कर त्यायो, पर सोई नाम भगत पव जल हरन गुर अमर दास तै पायो, नाम त्यावै देव तेतीस अर साधक सिद्ध नर, नाम खंड ब्रह्मंड तारे जह नाम समाद्यो, हरग सोख सम कर सहारे, नाम शरोमन सर्व में भगत रहे लिवतार, सोई नाम पदार्थ अमर गुर तुस दियो परगास, सोई नाम पदार्थ अमर गुर तुस दियो करतार, सत सूरो सील बलवंत सत पाए संगत सगन, गुरु मत निर्वैर लीना जिस तीरज तुर तवल तुजा, सेत बेकुंठ बीना परसै संत प्यार।

मल जन्म जन्म दी कटी सजन सच्चा पातशाह सिरसा देसा हो जिस पास बैठिया सोही सब नादा विसा हो सतनाम